0: रेडियो हो।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

थी बुढ़ा बुढ़ी बीते अंतिम सांस में पानी खोने आतो रूपनी थी नन दाह संस्कार करना लाश उठाने कांद रूपनी बीती नन गांव में बुढ़ा बुढ़ी बच्चा बच्ची स्वास्नी मंचे बाई कोई था ही ना मंचे भाई रूपनी रित्तो भाई को सगाऊं कोई उन्नत सा तो कोई उन्नत सा